0: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है।
1: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
0: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं। कई होटलों में बुफे सर्विस भी होती है, जिसमें मुकर्रर पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं।
1: फिर तो मेरे लिए बुफे सर्विस बेहतर है, इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं।